अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की श्री कौशल्यानंदन भगवान की श्री दशरथ नंदन भगवान की श्री कैकेयी नंदन भगवान की श्री सुमित्रानंदन भगवान की श्री चारो भैयन की हनुमान जी महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की सर्व संत वैष्णव भगवान की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की

0: राम राम नगर राम अमृत निधि नाम नम श्री राम नाना भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम
1: जय श्री राम
0: जय श्री राम
1: जय श्री राम
0: जय जय श्री राम
1: जय जय श्री राम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

श्री गोविंद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। श्री भगवान अपने अति जिज्ञासु भक्त को आध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधिभूत व अधियज्ञ के बारे में समझाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन प्रयाण के समय मनुष्य का जैसा भाव होता है उसे वैसी ही गति मिलती है। अतः इस दुख आलय नश्वर जग से मुक्ति पाने के लिए मानव को सदैव मेरा स्मरण करते रहना चाहिए।

श्री कृष्ण इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की दिवस एवं रात्रि के आधार पर कल्प की आयु को स्पष्ट करते हुए दक्षिणायन उत्तरायण शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों पर आधारित जग प्रयाण के पृथक मार्गों का वर्णन करते हैं। वे कहते

श्रद्धालु प्रभु भक्तों, महाभारत पुराण के भीष्म पर्व का यह उत्कृष्ट भाग श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का अथाह सागर है। यह शाश्वत संदेश वर्तमान समय में भी विश्व में प्रचलित सभी धार्मिक मान्यताओं का मूल आधार है। गीता में मुख्यतः परमपिता परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन संपूर्ण सृष्टि, समस्त जीवात्माओं तथा भौतिक देह की वास्तविक स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है।

हर एक जीवात्मा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का परम लक्ष्य निर्धारित करते हुए गीताकार ने इस हेतु कर्म, ज्ञान, ध्यान एवं भक्ति रूपी चार प्रमुख मार्गों का सहज शब्दों में निरूपण किया है। गीता में विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक मार्ग की श्रेष्ठता को भी प्रतिपादित किया गया है, परंतु ऐसा साधक को भ्रमित करने के लिए नहीं, अपितु परमात्मा के विस्तृत स्वरूप के अनुसार इस ग्रंथ को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का निरंतर अध्ययन व चिंतन करने के पश्चात ये सभी मार्ग एक समान तथा एक दूसरे के पूरक ही प्रतीत होते हैं। भगवत प्राप्ति के इन सभी मार्गों की पराकाष्ठा है अनन्य भक्ति व अंततः शरणागति। श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, अर्थात प्रभु के नाम का संकीर्तन, श्रवण व स्मरण, प्रभु के समग्र स्वरूप की अर्चना, वंदना तथा चरण सेवा करना एवं प्रभु की दासता, मित्रता व शरण को स्वीकार करना ही भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। श्री मद्भगवद गीता रूपी इस गुह्यतम ज्ञान सागर के अगले अध्यायों के श्रवण से पहले आइए इस सनातन संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रेम भाव के साथ संकीर्तन करें।

जाना पाओ से अवतरित माता रेणुका की तपस्या का प्रतिफल, आखिर क्या कारण है तुम्हारे यूं कहने का? विंध्याचल की बीच सागर से मिलन

चित्रा, गंभीर, सिवना, बनास, कालीसिंध, पार्वती जैसी पुण्य धाराओं का जल देकर यमुना में समाहित होने का रहस्य क्या है? नदियों के चरित्र के विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर मालव के गले की यज्ञोपवीत बन जाने का मार्ग क्यों चुना तुमने चंबल? बोलो, जवाब दो।

0: पुराणों में जो उल्लेख आया है उसके बारे में, वो रंती देव से इसको जोड़ा गया है। रंती देव ने यज्ञ किया था और कर्म से निरंतर धरती सरिता को जो धारा प्रवाहित हुई उसको चरमनवती कहा गया और कालांतर में उसका नाम चंबल हो गया।
1: आप हैं इतिहास वेत्ता श्री हेमंत त्यागी।
0: मल्लीनाथ ने जो कालिदास के काव्यों की टीका की है उसने इसका उल्लेख किया है।
2: जब जमदग्नि महाराज की स्त्री धर्मपत्नी माता रेणुका

0: मेरे को आवश्यकता है तो आप कृपा करके वहीं पधारें। तो माथे से ऋषि संभल के रूप में इस जाना पाव पहाड़ के ऊपर नर्मदा जी आकर के विराजमान हुई संभल के नाम से।
1: लेकिन परशुराम ने जिस धारा में अपना परशु धोया था

0: कुंभ बताओ ना
1: किसे खोज रहे हो तुम?
0: कुंभल को।
1: कहो मैं हूँ चंबल।
0: तुम चंबल हो?
1: हाँ मैं ही चंबल हूँ। यहाँ मैं इसी रूप में रहती हूँ।
0: तुम दिखाई क्यों नहीं देती?
1: बरसात के बाद मैं उधर मैदान में रहने चली जाती हूँ। यहाँ क्या करूँ रहकर? जब यहाँ घने वृक्ष थे तब मैं यही रहती थी साल भर।
0: यहाँ की सूखी धारा देखकर कोई कैसे पहचाने कि मानव कल्याणी चंबल का उद्गम यही है?
2: लेकिन कम से कम इतना किया जाना चाहिए कि जाना पाओ पर हम चंबल के लिए कोई स्मृति स्तंभ या स्मृति चिन्ह वहां पर बनाए, उन लोगों को बताया कि यहाँ से चंबल निकली।
3: पूर्व सांसद एवं कवि श्री बाल कवि बैरागी मनासा जिला मंदसौर।
2: कैसा लगेगा कि जिसने इतने मेगावाट बिजली पैदा कर दी उसके उद्गम स्थल पर हम एक बल्ब भी बिजली का नहीं लगा पाए?

0: विद्रोही और एकांत प्रिय ही नहीं, मुझे अपवित्र भी कहा जाता है।
1: अपवित्र? ऐसा क्यों संबंध?
0: शायद चर्म से बही धारा मानते हैं मुझे।
1: लेकिन कुमरी यज्ञ में तो पशु बलि नहीं दी जाती, राजा रंती देव ने भी पशु बलि नहीं दी होगी।
0: शायद परशुराम के परशु से बहे रक्त के कारण।
1: किंतु बहती धारा को तो हमेशा निर्दोष माना गया है हमारी संस्कृति में, तो फिर क्या कुमिर का केवल दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के कारण ही तुम्हें लोक संस्कृति से अलग थलग कर दिया गया है?
0: ऐसा कुछ नहीं है।
1: उद्गम से संगम तक तुम्हारे किनारे केवल कोटा ही एक बड़ा शहर है। शहरों से इस तरह दूर रहने का क्या कारण है चंबल?
0: शहरों से अलग थलग रहकर ही तो मैं उस प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पाती हूँ जो मेरी सहायक नदियां लेकर आती हैं।

0: सभ्यता के विकास की कहानी संबल के आसपास ही घूमती है। इसके आसपास ताम्र युग के अवशेष काफी मात्रा में मिलते हैं। एक जमाने में संबल को मालवा की सीमा रेखा माना जाता था। उत संबल उत बेतवा मालव भीम सुजान, दक्षिण दिशी है नर्मदा यह पूरी पहचान।
1: संबल जो अपनी यात्रा तय करती है, यात्रा में निकलती है, वहाँ से इसके किनारे किनारे बहुत से ऐसे स्थान है जिसे अब बताऊँ मैं आपको कि ओलिकर वंश का पहला शिलालेख जो प्रतापगढ़ के पास मिला है
0: श्री हेमेंद्र त्यागी,
1: तो वहाँ जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है सभाग्रह को और शिलालेख लगाया है वो अपरक यानी आवरा का ही रहने वाला था। और ये आवरा मंदसौर जिले में ही स्थित है और संबल के बिल्कुल किनारे पर।
2: इतिहास पुराण ही नहीं बुनियाद से मानव संस्कृति के विकास की गवाह हूँ।
0: राजा ययाति के राज्य की सीमा यही थी। विक्रमादित्य उदयन, अशोक तोरमान, मेहरकुल यशोधर्मन, बाबर, अकबर जैसे सारे महान विजेताओं के उत्थान और पतन की गवाही रही है चंबल। फिर मुगलों के बाद अंग्रेजी राज और अब आजादी में भी चंबल समय के परिवर्तन की बराबर की साक्षी रही है।
2: गलत कह रहे हो तुम।
0: लेकिन परशुराम के परशु से लेकर भिंड के डकैतों तक हर जगह तो तुम्हारे नाम के साथ विद्रोह का ही स्वर सुनाई देता है।
2: इंसान से इंसान की लड़ाई के तुम्हारे इतिहास से हमेशा मेरा विरोध रहा है।

0: बड़ी लड़ाई नहीं हुई तुम्हारे किनारे पर, वीरों ने चाहे अपने शस्त्र खोए हो तुम्हारे पानी में, दीघड़ों ने चाहे उन्हें शरण दी हो, मगर तुम्हारे पानी ने कभी आतताइयों को प्रश्रय नहीं दिया। शायद अपने इसी गुण के कारण जानापाव से मंदसौर जिले तक की तुम्हारी यात्रा महिमा मंडित नहीं की जा सकती।
1: चंबल पूरी जो इसकी लंबाई है चंबल की, उसमें केवल वही फल चंबल को यश देने वाला है कि जो स्थल मंदसौर जिले में से होकर के निकला है, क्योंकि यहाँ हमने छोटे बड़े इस पर राजस्थान के 3-4 बांध छोटे बड़े बांधे हैं।
0: श्री बाल कवि बैरागी,
1: भारत वर्ष के इतिहास में, विकास के इतिहास में केवल चंबल बांध ही वो बांध है कि जिसको बांधने के लिए उन लोगों ने भी चंदा दिया अपनी तरफ से कि जो लोग इसमें डूब गए।
0: वो विपरीत बहकर तुम्हें विरोध की प्रतीक ही कहलाना था चंबल, तो कांधी सागर से बंधना क्यों स्वीकारा? क्यों सींचते हो बंजर मरुभूमि को, क्यों बनाती हो इतनी बिजली? जवाब दोगी?
2: मैंने कहा ना, मैं राजाओं के इतिहास से नहीं, मानव मात्र के कल्याण से जुड़ी हूँ। गांधी सागर ही नहीं, एक के बाद एक 4 बांधों से बंधना मुझे इसी कारण रास आया कि मुझे दिखाई दिया कि इसमें यहाँ के निवासियों का कल्याण है।
1: संसार की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, मनुष्य ने अपने हाथों से इतनी बड़ी झील संसार में कहीं नहीं बनाई।
3: चंबल नदी पर जो बांधों की संख्या बनी है उसमें सबसे पहले गांधी सागर बांध बना है और यही बांध प्रमुख है और सबसे बड़ा है।
0: श्री एम दुबे, कार्यपालन अभियंता सिंचाई, गांधी सागर जिला मंदसौर।
3: इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता 6.1 मिलियन घन फुट है और ये 204 फुट ऊंचा है और 1680 फुट लंबा है। इससे सिर्फ पानी ही संग्रह होता है, यहाँ से सीधी सिंचाई योजना नहीं है।
0: इस पानी का 3 तरह से उपयोग किया जाता है, बिजली उत्पादन, सिंचाई और मछली पालन।
1: यदि मैं आपकी जानकारी में ये बात लाऊं,
0: श्री बाल कवि बैरागी, मनासा जिला मंदसौर।
1: तो कलकत्ता के बाजार में जो कतला मछली खाई जाती है, बेची जाती है, वो चंबल के बांध की मछली है और वो सबसे ज्यादा कमाऊ मछली है, तो देश के लोग चौंकेंगे, किंतु ये सत्य है।
0: विशाल झील बनाने वाले बांध का आकार देखकर आश्चर्य होता है। चौड़े मैदान में बहती हुई चंबल यहाँ से एक अत्यंत सकरी घाटी में प्रवेश कर जाती है।
1: ये चंबल माता यहाँ मेरी के दल में से निकल गई है। 5-7 किलोमीटर तक का ऐसा हिस्सा है चंबल बांध के आसपास कि ऐसा लगता है कि नदी पूरे वेग के साथ में किसी नेवले के बिल में से गुजर रही है।
2: विंध्या जल का मैत्री संदेश अरावली तक पहुँचाने का यही तो एक रास्ता था, और अगर इस मार्ग से मैं नहीं गुजरती तो बताओ बांध बनाने की ये अनूठी जगह किसी काम आती?
0: बांध का ये अनूठा स्थान ढूंढा था आजादी से पूर्व होलकर राज्य के एक अधिकारी श्री दुबे ने, किंतु आजादी के बाद इस समूचे क्षेत्र के विकास के लिए 4 बांधों के निर्माण की योजना बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1954 में इसका शिलान्यास और 19 नवंबर 1960 को उन्होंने ही इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया।
1: इस नदी पर 3 पावर स्टेशन।
0: बी.एल. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, गांधी सागर बांध।
1: तीनों पावर स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता 386 मेगावाट है। यहाँ से जो भी बिजली का उत्पादन होता है वह 50-50% के हिसाब से दोनों स्टेट को दी जाती है। यहाँ कोटा बराज से 2 नहरें निकली हैं, राइट मेन केनाल और लेफ्ट मेन केनाल। इनसे भी जो सिंचाई होती है वो 50% मध्य प्रदेश की भूमि और 50% राजस्थान की भूमि की सिंचाई होती है, और आज की तारीख में करीब 12 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है।
4: राजस्थान में तो चंबल इज द ओनली रिवर जिससे कि हम हाइड्रल जनरेशन कर सकते थे।
0: श्री आई.जे. पाल, कार्यपालन अभियंता, विद्युत मंडल, रावत भाटा, राजस्थान।
4: यहाँ फर्स्ट यूनिट आरपीएस पावर स्टेशन पे फरवरी 68 में कमीशन हुई, सेकंड यूनिट जून 68 में कमीशन हुई, थर्ड यूनिट दिसंबर 68 में कमीशन हुई और फोर्थ यूनिट मई 69 में कमीशन हुई।
0: और तीसरा बांध है जवाहर सागर।
2: तीन तीन बांध बन गए और उनसे केवल बिजली ही बनाई गई। यहाँ के किसानों की जमीनों को सींचने के लिए मुझे एक बार और बनना पड़ा कोटा बराज में।
5: लेफ्ट मेन कैनाल केवल राजस्थान के ही एरिया में लाभान्वित कर रही है, वो ज्यादातर कोटा की कुछ एरिया और बूंदी डिस्ट्रिक्ट।
0: श्री अजय अंकलेश्वरिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग, कोटा, राजस्थान।
5: केशवराय पाटन एक बूंदी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा विलेज है, जिस एरिया में जाती है और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जाती है। कापरेन ब्रांच कैनाल लाखेरी तक, लबान लाखेरी तक के एरिया को सिंचित करती है। मेज नदी के पास तक की जो जमीन है वो इरीगेट होती है।
0: आश्चर्य होता है, विपरीत दिशा में बहने वाली एक साधारण सी नदी मानव के हाथों बंध कर इतनी समृद्धि दे सकती है।
5: आज से पहले जब तक चंबल की नहरें नहीं बनी थी, आसपास के गांवों में एक मकान भी पक्का नहीं था। आज सारे मकान आपको पक्के मिलेंगे। यहाँ काश्तकारों के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, कन्वेंस थी ही नहीं। आज 90% काश्तकार के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, खुशहाली तो बहुत बड़ी है।
2: मेरे पानी की सफलता का ठीक ठीक पता तो किसानों से बात करने पर ही लग सकता है।
6: क्या नाम क्या आपका?
4: सरसई सिंह।
6: क्या?
4: सरसई सिंह।
6: अच्छा, ये कौन से गांव में बैठे हैं हम लोग?
4: गुडली रेलवे क्वार्टर।
6: अच्छा, ये कोटा से कितनी दूर है?
4: ये 18 किलोमीटर।
6: 18 किलोमीटर। अच्छा सर जी, ये बताइए कि कभी ये नहर का पानी नहीं होता यहाँ से? अभी तो बहुत पानी है ना, चंबल की कृपा है, खूब बढ़िया आपकी फसल दिख रही है। मान लो ये नहीं होता तो फिर आप कैसे खेती करते?
4: खेती क्या है, खेती थोड़ी होती
6: है
4: सर, तो खेती एक फसल ही होती।
6: अच्छा,
4: चलो एक ही तो होती है, ज्वार ज्वार ही होती थी।
6: क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। आप कहाँ खेती बाड़ी करते हैं?
7: हम यहीं रहते हैं, पास में बरखेड़ा गाँव है।
6: अरे आप क्या क्या मुख्य फसल क्या क्या लगाते हैं?
7: हमारी यही फसल है बस, गेहूँ है, चावल थे पहले।
6: चावल कौन सा लगाते हैं?
7: बासमती।
6: बासमती की खेती कर लेते हैं।
7: बासमती, बाकी दूसरा टेरिकॉट, सारी फसलें करते हैं।
6: आप बताइए थोड़ा सा कि चंबल आने से आपको क्या लगा यहाँ पे?
7: चंबल आने से हमारे
6: स्वर्ग ही स्वर्ग, चंबल से स्वर्ग बनाया। नहीं तो वैसे क्या था पहले? कुछ भी नहीं था।
4: चंबल से जो अपने यहाँ भिंड और मुरैना जो चंबल नहर प्रणाली है वो इसी चंबल।
0: श्री श्याम सिंह, उपायुक्त विकास,
4: ये जो क्षेत्र है चंबल संभाग का, ये पंजाब की श्रेणी में माना जाता है। जब से ये चंबल नहर प्रणाली लागू हुई है तब से ये बड़ा काफी संपन्न इलाका हो गया है, और विशेष रूप से तिलहन के क्षेत्र में। फसल की पद्धति ये यहाँ पे जिस समय ये चंबल नहर प्रणाली नहीं थी उस समय यहाँ केवल बाजरा होता था, और आज ये है कि यहाँ सरसों आपको लहराती दिखाई दे रही है।
0: विकास और समृद्धि लाती है कई समस्याएं।
5: राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में दोनों जगह जहाँ चंबल की नहरें निकली हैं वहाँ काश्तकारों को खुद अपने ढोरों की मेंटेनेंस अच्छी रखनी चाहिए।
0: उनका अजय अंकलेश्वरिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग, कोटा, राजस्थान।
5: खेत में काम में आना हो उसी में लगे, अभी ऐसा नहीं हो रहा। इसके अलावा जितना पानी की आवश्यकता हो उतना ही खेत में लगाना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा लगा रहे हैं। मतलब जितना पानी हमने बनाया और नहर में चलाते हैं जिससे फायदा हो सकता है, उससे कोई 50-60 गुना पानी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हमारे काश्तकारों को अभी तक उन्होंने वो सब तकनीकें नहीं अपनाई जो इम्प्रूव तकनीकें हैं जिनसे कम पानी में ज्यादा फसल हो सकती है।
8: पानी के वितरण की जो प्रणाली है वो बहुत ही
0: दिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध डॉक्टर बिलवीर सिंह, जिन्होंने चंबल विकास एवं बिहड़ों पर शोध कार्य किया है।
8: ट्रिब्यूटरी प्रारंभ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटरी प्रारंभ हो रही है, जिनके खेत उसके निकट आते हैं वो पानी को जबरदस्ती वहां से लेते हैं। और कहना चाहिए असंवैधानिक प्रयोग जल का जो है पूरे चंबल संभाग के अंदर बहुत ज्यादा है। तो लोगों को अभी इसके दुष्परिणामों के बारे में तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो भूखी और प्यासी जमीन थी और जब उसको जल मिला तो निस्संदेह रूप से प्रोडक्शन जो है वो तो डेवलप हो गई।
2: शहर से नदी को सभ्यता नहीं

0: प्रदूषण ही मिलता है।
1: हाँ ये सही है कि चंबल देश की अन्य नदियों की तरह से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी चंबल है।
2: किस तरह से?
1: एक तो चंबल के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनका गंदा पानी।
3: श्री रवि शर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क भिंड।
1: दूसरे गांधी सागर के आसपास जो राणा प्रताप एटॉमिक पावर प्लांट है वहाँ का पानी, उसकी वजह से यहाँ पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है।
2: देखिए पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पोल्यूशन जो पानी एक दफे फैक्ट्री में जाकर के बाहर निकलता है।
3: श्री के एस बुलिया, अधीक्षण अभियंता सिंचित क्षेत्र विकास चंबल कोटा।
2: तो ये निश्चित सुनिश्चित किया जाता है कि वो बाहर निकलने वाला पानी जो नदियों में बहेगा उसमें किसी तरह का कोई मिश्रण न रहे और वो पब्लिक हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचावे।
3: मुरैना और भिंड जिलों के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में चंबल की दाहिनी नहर से सिंचाई होती है, लेकिन यहाँ भी कई समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है।
4: कुछ क्षेत्रों में चंबल का जल जो है वो इतना ऊपर आ चुका है, उन कुओं का जल जो है इतना ऊपर आ चुका है कि आपके खारेपन की स्वरूप जो है वो मिट्टी के अंदर साफ साफ दिखाई देने लगा है। जिस चंबल संभाग के जल की बहुत बड़ी प्रशंसा थी, लोग उसके जल को बड़ा पौष्टिक जल मानते थे, बड़ा शुद्ध जल मानते थे, अब जहाँ जहाँ कैनाल इरीगेशन है नियर अबाउट 1 किलोमीटर रेडियस में आपका पानी जो है वो कुओं का खारी होता हुआ चला जा रहा है, और हो सकता है कि अगर इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो मिट्टी आपकी सॉइल तो एल्कलाइन सॉइल होनी है, वो रो एरिया हो जा रहा है जैसे कि गोहद में है या उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे चौड़े एरिया में रो ही चला जाता है। सफेद मिट्टी मिट्टी आपको दिखाई देगी, वो चंबल के कैनाल चंबल के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे किनारे ये प्रॉब्लम विकसित हो गई है।
3: लेकिन चंबल के पानी से आज जो 7 लाख हेक्टेयर खेत दो दो और तीन तीन फसलें ले रहे हैं वो सूने भी रह जाते यदि चंबल वहां आई होती।
0: लेकिन अब भी मुझे इंतजार है इस देश के लाखों लाख लोगों की समृद्धि का, इसके लिए अब भी मुझ में काफी क्षमता है।
1: सबसे बड़ी योजना जो है वो प्रस्तावित धौलपुर ताप बिजली घर की है।
3: श्री एल एम यादव, कलेक्टर धौलपुर।
1: चंबल से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ये भी हुई है कि मंजूरी मिल जाती है तो हमारे यहाँ का जो असिंचित क्षेत्र है वो सिंचाई के अंदर आ सकेगा और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। तीसरे चंबल से पर्यावरण के लिए भी हमें लाभ है। चंबल में कुछ ऐसे जल के प्राणी हैं जैसे घड़ियाल, डॉल्फिन, जिनसे न केवल इस क्षेत्र का नाम है बल्कि उनसे पर्यावरण में भी हमको लाभ मिलता है।
3: कोटा के बाद चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनकर बहती है। धौलपुर और मुरैना के बीच से बहती हुई ये नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है।
1: चंबल नदी हमारी मेनली चक्करनगर विकासखंड के थ्रू होती है, गुजरती है।
3: इटावा के मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक टंडन।
1: चक्करनगर विकासखंड हमारा इस क्षेत्र का सबसे बैकवर्ड, हम इसको विकासखंड कहेंगे। चंबल नदी और क्वारी नदी और यमुना नदी, तीन नदियों के कारण वहाँ पर काफ़ी, वहाँ पर बीहा का एरिया है, रेवेन्यूस एरिया जिसे कहा जाता है, और इस रेवेन्यूस एरिया के कारण खेती में काफ़ी अत्यधिक समस्या होती है वहाँ पर। इसके साथ साथ डेकोरेटिव की भी प्रॉब्लम है। इस एरिया में अधिक कार्य तभी हो सकता है जब यहाँ जो चंबल नदी का बिहड़ एरिया है उसको जब तक इम्प्रूव नहीं किया जाएगा तब तक उसमें सुधार के लिए संभावनाएं काफ़ी कम है।
3: और एरिया के समीप पचनता में यमुना में विलीन होने से पहले का बिहड़ों से भरा क्षेत्र भी चंबल की दीर्घ यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ चंबल डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है।
0: डाकुओं की शरण स्थली चंबल नहीं, आसपास बने बीहड़ हैं।

0: B-Hurl-C-Q. B-Hurl-C-Q अपनी पहचान करवाती हो चंबल, बोलो जवाब दो।
1: बीहड़ मेरा नहीं, यहाँ की माटी का स्वभाव है।
2: ये बीहड़ों का दुर्भाग्य या चंबल का दुर्भाग्य कहिए कि वो बीहड़ के किनारे से बहती है।
3: श्री रवि शर्मा, सहायक संचालक जनसंपर्क भिंड।
2: बाकी चंबल और बीहड़ का कोई आपसी सहसंबंध नहीं है।
4: दूसरा एक और है चंबल के बीहड़ में कि आपकी जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, आपका यमुना, आपकी क्वारी, चंबल और दो और हैं, जहाँ यहाँ उस पंचनद पर देखेंगे कि ये नदी जो है जब एक दूसरे से मिल रही है तो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर मिल रही है।
3: डॉक्टर बी वी सिंह, जिन्होंने चंबल विकास एवं बीहड़ों पर शोध कार्य किया है।
4: चंबल जो है ये नीचे है, उससे आने वाली रिवर जो है वो कैसी है, थोड़ी अपर लेवल को लिए हुए, तो उसका पानी जो है वो क्या करेगी, जब वो पानी बाहर जब आती है रेंज के अंदर, तो पानी जब फ्लो होता है तो वो पानी को क्या करते हैं, एक तरह का डैम बना देते हैं, और चंबल का पानी जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है, और जब वो रिसीव करता है तो रिसीव करने में परिणाम से वो आप जाएंगे कि वो चार तरफ को बैक करेगा, और बैक करने के बाद चार तरफ को फैलेगा और कटाव प्रारंभ होगा।
1: मानव को डकैत मैंने नहीं बनाया, मेरे आस पास की बीहड़ भूमि को जब तुम सुधार कर सींच लोगे, जब आस पास हर तरफ खुशहाली होगी, तब किसी को बागी या डाकू होने की जरूरत नहीं होगी।
0: सच है, नदी का पानी डाकू नहीं बनाता, डाकू तो बनते हैं गरीबी से, असंतोष से।
1: मैं तो अभी भी समझाना चाहती हूँ मानव को, अगर मेरे पानी का ठीक उपयोग करोगे तो और भी कई लाख एकड़ क्षेत्र को समृद्ध बना सकोगी, और अगर ऐसे ही नादानों की तरह व्यवहार करते रहे तो मेरा ही पानी इस सिंचित भूमि को मरुभूमि में बदलने में देर नहीं करेगा। मेरी इस चेतावनी को याद रखना।
0: इतना लाभ देने की बात भी चंबल की चेतावनियां ध्यान देने के लायक है।
1: मैंने कहा था ना, अभी भी मुझ में काफी संभावनाएं हैं। अगर आज का मानव मेरी धारा को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सके तो इससे कई गुना समृद्धि दे सकती हूँ मैं।
0: निश्चय ही आज के भारत की समृद्धि में तुम्हारे विद्रोह का, विपरीत बहाव का बड़ा हाथ है। हे चंबल, सच विद्रोह की सार्थकता उसकी रचनात्मक परिणति में ही है। जाना पाव से पचनता तक, उद्गम से संगम तक, तुम्हारी ये नैनाभिराम यात्रा मानव को देती है संदेश यही, मानव की देश की सुख समृद्धि के लिए अर्पित बहाव ही जीवन को सार्थकता देता है। और इस मायने में आज तुम सा सार्थक, तुम सा सफल और कौन है, हे संबंध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

नाव मझधार में आने आधी उठता प्रचंड आधी उठता।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के पिछले अंक में आपने सुना कि दैत्य माता दिति के कहने पर तारक पुत्रों तारकाक्ष विद्युन्माली और कमलाक्ष ने शुक्राचार्य को पुनः दैत्य गुरु बना लिया। शुक्राचार्य ने उनसे ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें तीन अभेद्य नगर प्रदान किए। तीनों दैत्यों ने एक बार फिर शिव के ही हाथों मृत्यु मांगी, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए वे तीनों शिव आराधना में जुट गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने तीनों दैत्य भ्राताओं का वध करना अस्वीकार कर दिया। उनसे भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है, सदा धर्म का नाश करने वाले दैत्यों ने धर्म को ही अपना रक्षा कवच बना लिया।
2: विप्रवर शौनक जी, जीवन का मोह ही कुछ ऐसा होता है। व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रकृति त्याग

0: कुछ भी करने को बाध्य हो जाता है।
1: परंतु सूत जी, जैसा ब्रह्मा जी सदा कहते आए हैं कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही होता है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे दैत्यों को धर्म की ढाल त्यागनी पड़ी?
0: शौनक जी, भगवान शिव शंकर देवताओं से ये कहकर अंतर्धान हो गए कि वे भगवान विष्णु के समक्ष जाएं, वे ही कोई उपाय बताएंगे।
1: तो क्या देवता विष्णु हरे के द्वारे गए महाभाग?
0: हाँ शौनक जी, स्वयं ब्रह्मा उनकी अगुवाई कर रहे थे।
2: नारायण नारायण नारायण, ये तो वास्तव में बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है विधात। दैत्य इसी प्रकार धर्माचरण करते रहे तो वे शीघ्र ही सबके पूज्य बन जाएंगे। देवताओं और दैत्यों में क्या अंतर रह जाएगा?
3: आपका कथन सत्य है नारद मुनि। हो सकता है मानव हमारी पूजा ही छोड़ दे।
4: वायुदेव, इस समय प्रश्न पूज्य अपूज्य का नहीं है, प्रश्न है दैत्य शक्ति का, जो उनकी धर्म परायणता के कारण बढ़ती ही जा रही है।
3: हाँ।
4: शुक्राचार्य अवश्य ही हम पर हंस रहे होंगे। तारक पुत्रों ने वरदान ही ऐसा मांगा है जिसका तोड़ असंभव प्रतीत हो रहा है।
2: नारायण नारायण।
0: परम पिता, आपके मुख से असंभव शब्द सुन मन बड़ा क्लांत हुआ। आप तीनों प्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं।
5: मुने नारद, हमारी शक्तियां अधर्म के नाश के लिए हैं, ना के धर्म के विनाश के लिए।
2: नारायण नारायण।
0: श्री विष्णु हरे, आपको स्वयं अपने हाथ मैले करने की क्या आवश्यकता है?
5: हम आपका तात्पर्य नहीं समझे नारद।
2: ऐसा हो सकता है महाप्रभु?
0: आप अंतर्यामी अपने भक्त का तात्पर्य न समझ पाए? त्रिपुर में धर्म विनाशक की उत्पत्ति तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
5: ठीक है मुने नारद, आपकी ये इच्छा हम अभी पूर्ण किए देते हैं।
2: नारायण नारायण।
5: त्रिपुर में अधर्म अथवा नास्तिक शास्त्र का प्रचार ही तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की शक्ति को क्षीण करेगा।

0: भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एक भयानक पुरुष उत्पन्न किया है वायुदेव।
1: हाँ इंद्रदेव, मुंडा हुआ सिर, मलिन वस्त्र और एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे में झाड़ू।
0: मुनि रूप धारण किए इस व्यक्ति के मुख से धर्म धन की वाणी फूट रही है।
1: हाँ।
2: हे भगवान विष्णु, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है?
3: तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न, अतः मेरे ही स्वरूप हो। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरण होगा।
2: प्रभो, मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य बताएं।
3: अहिरण, तुम्हें दैत्यों और मानवों के बीच नास्तिक शास्त्र का प्रचार करना है।
2: इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जो वर्णाश्रम धर्म में वर्जित हो। इसमें अभ्रंश शब्द तो हो ही, कर्म से संबंधित विवाद भी हो। तुम्हें सबके मन में ये धारणा बैठानी है कि स्वर्ग और नर्क यही हैं और कहीं नहीं।
2: मुझे ऐसा प्रचार कहाँ करना होगा भगवान?
3: मेरी आज्ञा से तुम त्रिपुर जाओ। पहले वहां की प्रजा

0: और फिर त्रिपुरा सुर तारकाक्ष विद्युन्माली तथा कमलाक्ष को अपना शिष्य बनाकर वहां तमोगुण का प्रकाश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, शीघ्र ही तुम्हारे नास्तिक धर्म का विस्तार होगा।
1: जैसी आज्ञा महाप्रभो।

0: समझ में नहीं आता ये मलिन वस्त्रधारी अल्पभाषी भिक्षुक कौन है, कहाँ से आए हैं?
1: हाँ मित्र, दीर्घ काल से देख रहे हैं ये शिव भजन गाते इधर उधर विचरण करते रहते हैं।
0: इनका नाम यति है और एक नए धर्म की शिक्षा देते हैं। कहते हैं स्वर्ग और नरक यही इसी धरती पर है।
1: परंतु ये तो प्रचलित वेद शिक्षा के विपरीत है। उसमें कहा गया है कि कर्म करने से ही स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं।

0: नारायण नारायण नारायण।
1: अरे महामुने नारद, आप दैत्यलोक में?
0: क्यों वत्स, क्या हमारा यहाँ आना निषिद्ध है?
2: नहीं नहीं ऋषिवर, परंतु पहले कभी आप यहाँ आए नहीं, इसीलिए।
0: नारायण नारायण, पहले कभी दैत्यलोक में धर्म का इतना प्रचार प्रसार भी तो नहीं हुआ। हम तो धर्म के अधीन हैं, जहाँ धर्म होगा वहाँ हम भी होंगे। हम तो इन यति श्रेष्ठ की प्रशंसा सुन इनसे दीक्षा लेने आए हैं।
1: दीक्षा देने वाले दीक्षा लेने आए हैं?
0: नारायण नारायण, बस इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये यति धर्म के नए आयाम निर्धारित कर रहे हैं, जिनसे हम भी सहमत हैं।
2: परंतु ये निर्णय कैसे हो कि इन यति मुनियों का धर्म ही

0: सही है, अथवा वेदों द्वारा प्रतिष्ठित धर्म।
1: नारायण नारायण, आपके तीनों राजा तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष अति धर्म परायण हैं, ये तो आप स्वीकार करते हैं ना?
0: जी मुने नारद।
1: आइए तो फिर उन्हीं के पास चलकर ये निर्णय लिया जाए।
2: हाँ, ये उचित ही रहेगा। वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित होंगे, शास्त्रार्थ रोचक हो जाएगा।
0: मुने नारद, हमें स्वीकार है, त्रिपुरासुर के समक्ष ही चला जाए।
1: नारायण नारायण।
3: ब्रह्म ऋषि नारद के आगमन से त्रिपुर धन्य हुआ, धन्य हुआ। मैं तारकाक्ष धन्य हुआ, धन्य हुआ।
4: विद्युन्माली का प्रणाम स्वीकार करें मुनिश्रेष्ठ।
5: और कमलाक्ष का भी।
1: त्रिपुरासुर, ये नारद, आप धर्म परायण महादैत्यों को भला क्या आशीर्वाद दे सकता है?
6: परंतु अचानक आने का उद्देश्य तो बता सकता है।
1: नारायण नारायण, एक ऋषि द्वारा दूसरे ऋषि का ऐसा कटु स्वागत। नारायण नारायण।
6: एक ऋषि दूसरे ऋषि का स्वागत नहीं कर रहा है नारद, एक दैत्य गुरु अपने दुश्मनों के दूत से प्रश्न कर रहा है। इससे पूर्व आपने कभी दैत्यों को अपना स्वागत करने का अवसर नहीं दिया।
1: आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु, आपने इससे पूर्व हमें कभी यहाँ आने का अवसर प्रदान ही नहीं किया। परंतु अब ये अवसर प्रदान करने वाले आप स्वयं ही हैं।
6: हम समझे नहीं।
1: नारायण नारायण, आज आपकी कृपा से, महाप्रभु शिव शंकर की स्तुति से पूरा दैत्य साम्राज्य गूंज रहा है। जहां उनके भक्त होंगे वहां हम ना हो, ये कैसे संभव है?
7: हम धन्य हुए ब्रह्मर्षि। हम न कहते थे दैत्य गुरु, हमारे प्रपौत्रों से सभी देवताओं को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। आज तीनों महाप्रभुओं के दूत नारद आए हैं, कल स्वयं देवाधिदेव हमारे प्रपौत्रों को आशीर्वाद देने आएंगे।
6: दैत्य माता दीदी, आप फिर अहंकार की ओर अग्रसर हो रही हैं। नारद की कूटनीति से आप अवगत नहीं है क्या?
1: नारायण नारायण, क्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य धर्म विस्तार के कार्य में योगदान को आप कूटनीति की संज्ञा क्यों दे रहे हैं?
6: धर्म विस्तार? कैसा धर्म विस्तार?
1: नारायण नारायण, हम तो इन यतियों की शिक्षा से प्रभावित होकर इनसे दीक्षा लेने आए थे, हमें इनका धर्म सर्वोत्तम प्रतीत होता है।
6: यतिवर, अपने धर्म की व्याख्या कीजिए।
8: शुक्राचार्य, हमारा ज्ञान वेदांत का सार है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता का कर्म नहीं होता, सब कुछ आप ही प्रकट हो, आप ही लीन हो जाता है। आत्मा में ही ईश्वर का वास है, समय आने पर शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है।
6: यदि आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे होती है?
8: दैत्य गुरु, किसने देखा स्वर्ग कैसा नरक कैसा? शास्त्रों के अनुसार उनकी प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होती है। कोई है ऐसा जिसने आपको मृत्यु के पश्चात बताया हो कि स्वर्ग ऐसा तथा नरक वैसा?
0: अरे, यति के इस प्रश्न से शुक्राचार्य भी निरुत्तर रह गए।
2: यति कह भी तो ठीक ही रहे हैं।
6: परंतु यति श्रेष्ठ, सभी की मान्यता है कि जहां सुख मिले वो स्वर्ग, जहां दुख भोगने पड़े वही नरक।
8: तो फिर दूसरे लोक में सुख और दुख की तलाश क्यों? यही कर्म करके सुख भोगो, स्वर्ग की प्राप्ति यही हो जाएगी।

0: आनंद ही ब्रह्म है, शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाली वस्तु है। अतः ज्ञानी व्यक्ति को शारीरिक सुख का भोग समय रहते ही कर लेना चाहिए। वेद भी सुख का साधन करने को कहते हैं, सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है।
1: अर्थात यतिवर, सुख के जो भी साधन हैं, उनका जीवन रहते उपयोग कर लेना चाहिए।
0: हाँ, शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का अर्थ ही क्या रह जाएगा।
1: यति ठीक कहते हैं, बुढ़ापा कष्टप्रद होता है, नरक समान होता है।
0: फिर तो पूजा, यज्ञ, तीर्थ आदि अर्थहीन हो जाते हैं। जो समय हम इनमें व्यतीत करते हैं, उस समय में भी हम सुख उठाने का प्रयास करें तो स्वर्ग सुख अधिक भोग सकते हैं।
1: वाह, ये तो बहुत उत्तम युक्ति है सुख उठाने की, अर्थात स्वर्ग प्राप्त करने की।
0: अरे, हम तो व्यर्थ ही प्रभु भक्ति में समय व्यतीत कर रहे थे। यतिवर हमें पहले मिल जाते तो इस समय का सदुपयोग कर लेते।
2: ठहरो मूर्खों, तुम किसके बहकावे में आ रहे हो? ये अवश्य ही देवताओं की कोई कूटनीति है।
3: हम आपकी बात नहीं मानते शुक्राचार्य। कोई भी देवता अपनी भक्ति बंद करवाना नहीं चाहेगा।
0: देवताओं ने तो हमें स्वर्ग प्राप्ति का सरल मार्ग दिखा दिया है। आओ मित्रों, चले आओ आओ, आज से हम यति श्रेष्ठ के दिखाए मार्ग का ही अनुसरण करेंगे।
4: आओ
5: चलो चलो चलो चलो चलो,
4: नारायण नारायण। चलो नारद, तुम भी चलो, तुम्हारा कार्य भी संपन्न हुआ। नारायण नारायण।

0: नारायण नारायण। परमपिता श्री विष्णु हरे, दैत्य साम्राज्य में धर्म का नाश आरंभ हो गया है, चारों ओर अराजकता का वास है।
1: यह सब तुम्हारे प्रयासों का ही फल है पुत्र नारद।
0: नारायण नारायण। परमपिता, ये तो श्री नारायण की लीला है। तीनों दैत्यों की बुद्धि तक कुंठित हो गई है, वे नास्तिक धर्म पर अग्रसर हैं। लक्ष्मी जी तक उन्हें त्याग कर चली गई हैं। नारायण नारायण।
2: और मुने नारद, एक परिणाम ये भी हुआ है कि हम सभी देवताओं की पूजा आराधना भी समाप्त हो गई है।
1: यही है धर्म का महाविनाश। अब तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष की शक्ति पूर्णतः क्षीण पड़ जाएगी। उन्होंने देवाधिदेव की उपासना समाप्त कर दी है, वे उनके भक्त नहीं रह गए हैं।
0: नारायण नारायण। अतः त्रिपुरासुर वध अब महाप्रभु के लिए अधर्म नहीं होगा।
2: आइए देवतागण, एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर की सेवा में चलते हैं।
0: नारायण नारायण।
1: ये

0: ये उचित नहीं हो रहा है दैत्य माता, कदापि उचित नहीं हो रहा।
1: क्या अनुचित हो रहा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? इस नए धर्माचरण से हमारी दैत्य प्रजा कितनी सुखी है, कितनी प्रसन्न है। और सच कहें तो हमें भी यहीं इसी लोक में स्वर्ग का सा अनुभव हो रहा है।
0: अपने क्षणिक सुख के लिए दैत्यों ने अपने दीर्घकालीन स्वप्न त्याग दिए हैं।
1: शुक्राचार्य, हमारी प्रजा हमसे प्रसन्न होकर हमारी जय जयकार करती है। उनकी यह कर्ण भेदी जय जयकार हमारे हृदय को जननकृत कर देती है।
0: दैत्य माता, इस जय जयकार के पीछे आप मृत्यु का नाद नहीं सुन पा रही हैं।
1: शुक्राचार्य, क्या आपसे दैत्यों का सुख देखा नहीं जाता? आप सदा से ही उनकी प्रसन्नता के मार्ग में अवरोध खड़े करते रहते हैं।
0: हम उनके सुख के मार्ग में नहीं, उनके और उनकी मृत्यु के मार्ग में अवरोध खड़ा करना चाहते हैं।
1: उन्हें इस स्वर्गिक सुख से वंचित करके?
0: हाँ, यदि उनके भविष्य के लिए ऐसा करना उचित है तो उनके गुरु होने के नाते हम यही करना चाहेंगे।
1: चाहेंगे? शुक्राचार्य, आप दैत्य गुरु हैं, वे दैत्य राज हैं, त्रिपुरासुर हैं। होगा वही जो वे चाहेंगे, और वे जीवन के एक एक पल का आनंद भोगना चाहते हैं।
0: जब दैत्यों ने शिवाराधना ही बंद कर दी हो, स्त्री धर्म पूर्णतः नष्ट हो गया हो, चारों ओर दुराचार फैल गया हो, तो जितने पल जीवन के मिले उनका आनंद भोगना ही उत्तम है दैत्य माता। दैत्यों की बार बार होती ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। इस बार हम स्वयं अपने पद को त्यागते हैं।
2: और ज्ञानी शौनक जी, दैत्यों को अपनी नियति पर छोड़ शुक्राचार्य वहां से अंतर्धान हो गए। द्विज श्रेष्ठ सूत जी, एक गुरु और कर भी क्या सकता है? कितनी ही बार तो शुक्राचार्य ने दैत्य साम्राज्य का विनाश रोकने के प्रयास किए, हर बार दैत्य माता दिति ने उनके प्रयासों को कुंठित कर दिया।
3: शौनक जी, गुरुत्व की भी एक सीमा होती है। ज्ञानी आत्मसम्मानी गुरु के लिए शिष्यों की क्या कमी रहती है? उन्हें तो एक से एक पराक्रमी दैत्य शिष्य मिलते ही रहे।
2: महाज्ञानी सूत जी, शुक्राचार्य के जाने के पश्चात त्रिपुर स्वामियों तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष का क्या हुआ?
3: दैत्य साम्राज्य में धर्मनाश के पश्चात सभी देवतागण देवादिदेव के पास गए और उनसे इन तीनों दैत्यों के वध का आग्रह किया।
2: महाभाग सूत जी, तो क्या शिव देवताओं की ये प्रार्थना मान गए?
3: शौनक जी, ये जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो विश्राम का समय आ गया है।
2: आप विश्राम करें, मैं पुनः उपस्थित होऊंगा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

सरयू तीरी यज्ञ करूंगे मुक्त करानी दान करूं, सरयू तीरी यज्ञ करूंगे मुक्त करानी दान करूं, शेवट चाहा यत्न करूंगे अंति अवभृत स्नान करूं। ईर्षित ते तो देईल अग्नि अनंत हातानी, लाड़के कौसल्ये राणी। उदास कातु आवर वेड़े नयना तिलपाणी, लाड़के कौसल्ये राणी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: कुन्देन्दीवर सुन्दरावति बलौ विज्ञान धामा वुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्द प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कूतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवता

0: हम ऐसे तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
1: वीरवर, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुखमारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है, हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं। बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
0: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
1: हनुमान, हनुमान,
0: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु, मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
1: हनुमान, हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
2: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
1: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानि मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
2: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
1: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
0: नाथ, सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानि तेहि अभय करीजिए। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
3: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर, उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
4: वानर राज, मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
5: देव, आप लोग चिंता ना करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पटडारी।
1: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
5: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
1: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं प्रभु।
5: आप चिंता ना करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
1: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
5: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था। बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
6: दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव।
1: हाँ भैया।
6: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम मेघ पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
1: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
6: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
5: प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा। तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
1: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
5: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्वसु अरिनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
7: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है। सिद्धांत कहता है, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो। मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
5: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। देखिए, वो दुंदभी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
7: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
5: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
7: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
5: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
7: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
8: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता।

0: शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
1: आज सुग्रीव को क्या हो गया? कहीं भांग तो नहीं खा गया?
0: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ।
2: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
1: क्या है?
2: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति,

0: मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो।
1: स्वामी, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कवन नाथ मैं मारा।
0: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित तेही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
1: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
0: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
1: नहीं नहीं कृपाने धार रही मुनिगण, जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जा सुकुन, नित नेति कहीं श्रुति का वही, जित पवन मन को निरस कर, मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कबन सट हटि काटी सुर तरु बारी करही बबू रही। अब नाथ करि करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु, जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हु। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
0: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
0: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
0: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रज थे, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और

ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज,
1: आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
2: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
1: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
2: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा।
0: उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर इतराने लगते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राज को सुपुर नारी। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर बाण चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण।

0: केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ। जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
2: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
3: हनुमान, हनुमान।
4: आज्ञा महाराज।
3: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
5: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
4: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
5: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
3: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
3: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
4: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में वानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
0: हरखि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही आए बान रजूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए की सुबरू। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
4: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है, जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
6: भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, बाला राम सुग्रीव की जय, बाला राम सुग्रीव की जय, बाला राम सुग्रीव की जय।
3: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सबकाहू, मन क्रम वचन सु जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवार।
7: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
0: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेऊ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम कर।
4: तो क्या मुझे बता सकते
1: कभी ये

0: कितना जटायु का बड़ा भाई, संपाति तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कहे बच्चा ने कारा,
3: चले आहार बिन मर,
2: तब ने मिल भरी उधर आहारा, आज दिन विधि एक ही बार।
4: अब तो साकार मृत्यु सामने खड़ी हुई है,
0: इससे निपट लेंगे, सोचने की क्या बात है।
4: वास्तव में कितना जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता, ये परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को किनारे के लिए दूंगा, फिर मैं तुम्हें सीता जी के

0: सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही जला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो गएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयउन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
2: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
3: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
2: तुम सब

0: कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
1: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
2: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
3: जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन तीन जब मोई।
0: तुमने हम सबको उबार लिया है ताज, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।